0: सेम कोने शुरू है यंग दर रे जी सिं सिंबदिनी कावे जोंकी लुजु छिमो रिजे ग्याजु छुदी
1: निमे वेसे के नोंगने मानजे जेदिन कामकी जेब थोंथु जेला छोय निंगबिन देले नीतुशी देवेग्या निवे युलोंगने छिसकी येगे येतुशी खंगदारया निवे दीयिना नामसे जेचेके थाकोदोबजेला निवे दी रिचोंग जेचेके जादानयेशी निवे नि जेसिन केबे छुदीदि जेला निवे नि मानाजु नांगसम दिसोचेके मेनचोदोबजेसंगिल